0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 7 बज्यो।

हजुरम बाजु अमर शर्मा सब लसित मे नैदिला ज्याजो नेवा दुबु ने चांदे गुदु नेवा दुबु ने छि निंज वेवका शनिबार आइदिबार सोता यथा कबडुंका ज्याजो ने दिफै बिदाय तक जुले जे ला टेक्निकल एसेसी निम दिदु दउ पीएमजी तंगने संगत जेगो यको मनोना बुझी थो संगत बालामा देगो छौ विचार ख विशेषमा संगतछिको यो कुमन नबुझी तर थगु स्वभाव आचरण गर्दैछ अजबिहे मन त पासजी सुन नप मिनुजा न्याउने फुइगु थगु छौगत थगु भावना व विवेक हेख संयम नप शालीनता पद्र व्यवहार न उल्हे महत्वपूर्ण जी सम्बन्ध सफु बाला गते त थन्दुफी सिमितजीको कल्पिन्द वास्तवमयगु साहित्य जीवन या तरंग गल्तिनु जीफु चिपि यो कुदेने पाश्वी परिवार दथिहे न्याप्लेन दियाचुनी छम मेमिसु नप न्याउन कथा समृद्ध न जियाचुनी त्यति पाश्वी नातगुता नप संयुज जिया स्वाभाविक रूप सकारात्मक लफी उनीको थैगु जीवन मयागु छ बालको भिङ्गो तरिका न खाओ के जिस संगत चाहिँ बाललाई मा धेतगु थकना जिस नेन चुनागु दु आज भने जो पके स्वरबद्ध छ मेन छ लिस्टिङ पके जि जुनागु दु निके थका

बच्ने नीतिन कने चोकी होर्हे पृथ्वी बजे बजेटला खर्च होला तर थजियाको बजेट न भौतिक विकास होला न शैक्षिक न आर्थिक न सांस्कृतिक विकास जोगुदो सायद थुकियाली अथवा एको ल्याम्पुच नप दक्ष जनशक्ति गुली विदेश प्लान गुली थगु लजगा हे तोता विकल्प कथा मेमेको ज्यान लात हेर्छु मदो विशेष पुँजीवादी व्यवस्था पुँजी वा सम्पत्ति या त जगत थ्याबी अथे थुक्ता सम्पत्ति सम्बन्धी कानून हे प्रष्ट किसिम असीमित सम्पत्ति ते दुको अधिकार नदो अधिकार कथा नेपाली त जग चुकमले थन अरबपति नदो अले मेगु 20 लाख अरबे थिन सङ्गदो यानि कि खाली राष्ट्र मोखला थन थोडु अरबपति देन्दस 40 अरब रकम सिमे अपो थगु कुल सम्पत्ति थपे यया नचङ्गदो रासा अरब ओपी ल्याम पुचपिन्छ म्यान पावर कम्पनी दलाल बिचौलिया तेगो पंजा लना ऋण सपरी टेसकागो 40,000 तकन फुली मफया आत्महत्या यागो अवस्था तंग ठ्याङ्गो स्थिति दो मेमी पनि हो सिमे थगो सम्पत्ति अपो डेमा धेगो कथा मनुष्य थोकने भ्रष्टाचार अनियमितता ठगी दलाली मानव तस्कर थिति मेगो तस्करी ज्या यागो समाज कथमा थितौं थियो अथे दाजगिजा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा तकेना चङ्गो बुकन्तन बोलना हुई चंगदो थौ सर्वोच्च अदालत जक 28,000 सिमे अप मुद्दा विचाराधीन दुग थैगु न ख थन जिस तो निने दु तो फुक थजगु ख पुजीबारी व्यवसाय न वगु त्या सबै बिगपि न थन यकदो थौ दोषी सुज सुले त्याबले थजगु ख या आफ्नो जगह थौ दोषी सुले त्याबले थजगु ख जिसमें यौके तैफो सत्या चौमनी को पूंजीवादी सोच आज जिसमें सक्षम समाजवादी सोच अवधारणा कथा न्यायनी मागो अवस्था हुए चंगदो थके थजे को व्यवस्था व्यक्तित्व विकास सम्मान अवसर दो अथे संपत्ति ते दु को सीमा लागन दे शोषणीय अन्त्यजी शिक्षा स्वास्थ्य मेमेको आधारभूत खतन निशुल्क क्याख्ने अथे नेगो चुनेको पुण्यको सुनिश्चितता सरकार हेबी यही अथे उत्पादनमूलक ज्या उद्योग कल कारखाना सरकार व समुदाय स्वामित्वजी निजीकरण गोकी सीमित मनुत धनीजी को थजगो अवस्था समाजीकरण धन प्याचीजी धनी व गरीब गांव व शहर विभेद दैमुख उगे चीस समाजवादी व्यवस्था थौया माख करना ध्यापो थुकी चीस थतुकुरा पलिया देश व जनता थुकी पलाईजी हजर लुमुकी माउ खे चिजको देश हो जनता अवस्था कति दु गुप्त न्याउँछु चौधा के विषयवस्तु जनाउँदो आज संगीत बाँकी सिक्नु त केन्द्रित यात्रा हे मेजु पूर्णमान मर्जन सदु आइत सहलै चुसक नभएको यो थो मे हे मेजु

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: अनुभवी निमी भाजमा छ दिपा दुङका हाल्न छ लस्कु सेन्चुरान ज्याजो ने अदबु ने चाँदिक दु ने अदबु छ जी राजेन्द्र डंगुल वचन ने अपने तै अले पास दु थौ भीम जी ज्याजो बके थन टेक्निकली ग्वाली चाँदिक दु ज्याजो ने जी संगीत नाम समसामयिक विषय वस्तु बके न केन्द्र जी ने हाजन दु आज यंग तै नाजी गन त मेगु संगीत बके न उया न्या थन जनता छ दिन छ पञ्जु मगु छ या थौ खन जी चिन्त कनेगु जी थगु दे बालामा समृद्ध जी मा भी जी मा थन चनी भी जनता भी सुखी जी मा खुशी जी मा जे जीमा देशभक्त तेगु विजात रेख देश खलाबले दक्षिण नपा न्यान वेगु छ दखंख रान्ति रान्ति हज अथे रान्ति नपा स्वाबदुगु मेगु खंख दल पार्टी थन देश दल पार्टी एकदु थोय दल पार्टी याना देशभक्त जनता तथौ विचलित ज्याचंगु दल पार्टी चिचरंगो तरंगो नोगो फुलांगो तर चिसा एक तिथि दल पार्टी त सोया वै छन् उदो तथे दल पार्टी लुमुङकी बले थुम्सा देव जनता नीति छुसु ज्या यान छन् उदोले सार लिस अनुतर इतन जिफु एक छ मुतु बालागु ज्या यक तयगु लिस मवेन फु थु बिसले जि छि बन्त हाक्न तन कनियो जि तन आज यंग दिन मेजो ललता मानन्दर या स्वापखे यंग दिन मति ना हे चुकुला

0: காட்டில்லை கட்டி பைசனோ இன்னி பிக்கர் பிச்சுதோ இன்னி பிக்கர் பிச்சுதோ
1: மோ ராஜா ஹுசு தினி போனி தியோனு ராணி उन्हें चौकी खामरो चुपके कहानी बनाऊंगा फिर से सामी खारी खारी विषय दिने कस्तूर तुम रुपानी अब न जाऊं न पर पर जानी जानी मन न चिक अंका की न हो चुके पानी पानी वैसे ठंड की तरह अब सोचने पहुंची मन मिले साथी मला रोज ने पहुंची।

वरिष्ठ संगीतकार राजकुमार बगर को मन सुने लय सृजना अनि एलिसा तिमल सिन्हा को उत्कृष्ट शब्द सृजना भित्र हुमन अधिकारी र एलिसा तिमल सिन्हा को सुमधुर आवाज अब बजार में।